大概是48的频率，分析宇宙的震动啊，那个很快，初期的那个里面，玻璃里面啊，

संसार में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त।

sebe niki će da se potisnete, a smiju će vam se ritmane stan vlog duho bit. Svaki već se pentali smene sve karikrum hoga sam vid se vita. Šim klas, dečitak vardio. Kala kažno doktor Papal Maharis, iz šim klas mi čoči sadi aža smenge. Karikrum ka pune prasaran hoga, šam si već se pentali smene par. Sve sate ki karikrum bude više vid, od sate skati smene par, kam hoj rahi tjarki. सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम शुरू होगा। वह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज की संचार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों से कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार नितिन प्रदीप से मंदा के निकल की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग चरण और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 की है त्रिवेणी।

सुपर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनाई जाएगी। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर चरानी में

लेखक हैं राजकुमार वाल्कर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा पितृलोक और 9:00 में आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आपके संपर्क अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10:00 का समय छायागीत कार्यक्रम का है और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11:00 सुनिए कार्यक्रम।

और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहाँ एक ओर उपस्थित जन समुदाय हर्षित हुआ, वहाँ दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आक्रोशित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम देखा जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में है। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अगर देवताओं ने भारत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को

की प्रशक्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

माध्यम से देश के सब अपनी बात बहुत बड़ा स्रोत बनते हैं।

विभिन्न सारंगियों की बात की थी। आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारे मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। जब से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक शुक्ल पाठ में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वर में गाया जाता है। गायन में सारंगी की समझ से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भावक व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके अविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मीरा कन्नू खान, हकीम बकरार गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न भिन्न नामों से किया है किंतु विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 16वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में प्रचारित हो चुकी थी। संगीत राज ग्रंथ के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। यही कारण है कि आईने अकबरी और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत निवेशन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग शेरवानी सुनते हैं। कलाकार है उस्ताद अब्दुल लतीफ खान।

छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य चार तार और 33 तबलों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य चार तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम ताश का तार मध्य सप्तक भरत स्वर में, दूसरा ताश का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा ताश का तार मंद्र सप्तक के शरद स्वर में और चौथा तार भौला का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों

विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितने लोकप्रिय होना चाहिए उतने लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उसका गुंजू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रस

nowadays are finding

Jesus

जन्म की बोल संगीत रविका।

se distribuye, el solo que dora es el mismo que está en el valle de la vida. और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का

पदार्थ किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है।

विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय तरसते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। देवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिंदुस्तान

बढ़ता ही जा रहा है और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर

जरूरतें पूरी होने पर लोग झुक जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई

से पूरा करने में लग जाते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। उसी अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

समाचारों के साथ मैं पूनम करके चंद्रे मुख्य समाचार।

खिलाड़ियों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए जेपीएल T20 मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहित दास के

जो बढ़कर अस्थ में पहुंच गई।

God of creation.

you know what? I'm so lucky. On Facebook, just my name Instagram हमारे सुन सकते हैं आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में आज राष्ट्रीय प्रेम मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है।

0: राजधानी रांची का जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट के रोमांच और खेल प्रेमियों के उत्साह से सराबोर है। कल खेले गए मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने सनराइज रांची टाइगर्स को 6 विकेट से हरा दिया। सनराइज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 82 रन बनाए। कोयलांचल सुपर किंग्स ने 11 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं दूसरे मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 8 विकेट से पराजित कर दिया। संथाल स्ट्राइकर्स की टीम ने 168 रन बनाए, जिसके जवाब में छोटा नागपुर ने 169 रन बनाकर जीत हासिल कर ली।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां।

Thank you.

जी आपने सुना प्रादेशिक समाचार हमारी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी जमशेदपुर के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। जुड़ रहे हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से, जहाँ से आप सुनेंगे कार्यक्रम

de viajar de a grupo diversos, cuando tengo de dinero en el país, ahora me dirijo a ver un barco, ¿no? Yo jamás es más que hablar de fondo, ¿no? Siempre al menos preasen que regrese, con sus amigos que regrese, jamás es ver bagaje, ya está pago bagaje, ya es un sitio que se dice. Yo por वही बुजुर्ग जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो अक्सर उनकी अनदेखी होती है, कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये दुर्व्यवहार शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक और आर्थिक रूप से भी हो सकता है। कई बार उनकी बहुत घोर उपेक्षा की जाती है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं और कई बार उन्हें बहुत पीड़ा भी होती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर इन परिस्थितियों ये परिस्थितियाँ ना आए, इसी बात को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करते हुए ये दिन मनाया जाता है। तो हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं या समाज में जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकार बने रहे और वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। तो आज है बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूक दिवस। आप सुन रहे हैं विविधन कार्यक्रम जारी है कुछ लोग। अब आपको सुनवाते हैं लुका छुपी फिल्म का गाना, करण सहंदी की आवाज में निर्माण का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बाक्षी और गोल्ड बॉय का

do, nor will they do

decision by didn't pay the bill.

कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र लोक। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लव यात्री फिल्म का आखिरी गाना है, देव नेगी यो यो हनी सिंह इनकी आवाज है। शब्बीर अहमद यो यो हनी सिंह और होमी दिल्ली बाला इनका लिखा हुआ गाना फिल्म की बाकी का संगीत है।

好像是区别的人，性格会是好一点。

होता है वो चीज है या वो हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। झुकना चाहिए ये मानने के लिए तो कि लोग कुछ नहीं बता स्ट्रॉन्ग रहते हैं, दूसरों से बात नहीं करता। आप 50% गायब हो गए और 25% जो काम है वो व्यक्ति भी होता है और सबसे शून्य और सुंदर है। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर ज़्यादा कुछ

सुकून और चैन से भर जाता है। गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के संचार कार्यक्रम में चर्चा, गायिका और अदाकारा

जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब जो अब पाकिस्तान में है ले जानी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में

की वजह से 1935 में उन्हें फिल्म उसमें जयसोधा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गयी। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को इनकी नजर में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका

0: हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया की हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक जोड़ बन गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। उम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरेनो पॉइंट से अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी बीती रही।
1: मैं तुझे तो

संस्करण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत है, हाँ मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना।

एक गीत तैयार किया जबकि एसी वर्मा साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत वर्मा साहब से ही गवाया जाए, लेकिन वर्मा साहब राजी नहीं हुए। वे बोले ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, तो ये गाना सुरैया ही गाएगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सबके लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

उठे आखिरी पीढ़ी थे। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो जहाँ और खुशी सरहद के उस पार चली गई, पर सुरैया हिंदुस्तान नहीं रही। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी तरफ

उसने एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थी। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसे अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनकी गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल पाने वाली

तरह दोनों को अलविदा कहा जब वे और कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी 2004 में उन्होंने इस पानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और

अपने पास पर। सुबह के 10 बज रहे हैं, थोड़ी ही देर में हम हाजिर हो रहे हैं चंद गजलें लेकर

और फिल्म है आम्रपाली।

Thank you.

कभी कभी वही हाथ अपनों के लिए

आज से शुरुआत हो गई है अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह। 15 से 21 जून तक मनाए जाने वाले इस योग सप्ताह का मुख्य उद्देश्य केवल एक दिन योग करना

दीर्घायु के लिए योग।

दो शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने

वाली बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में इन मौसमी फलों का सेवन आप जरूर करें, साथ ही साथ अब इंजॉय करें।

से भी नवाजा गया। दोस्तों सुरैया ने मिर्जा जी प्यार और अनमोल घड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा गाने गाए और लगभग 67 फिल्मों में अभिनय किया और वे

Hamar

0: जाना वो अपने बिजनेस में बना ले।
1: योगा किसी ने नहीं, हाँ
0: योगा तो किसी ने नहीं, तुमसे अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं
0: तो बता दो आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700142
0: 8700142 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142

जो घर पर केंद्रित है, सपने एक थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
1: हाँ जी नहीं, सखी मिली है सखा विष्णु जी है, सोमवार से शुक्रवार।

सिंह की आवाज में, समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नवीन श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और सुरेश पांडे की आवाज में है, रचना में गुलजार की।

station 1 didn't pay the bill.

उनका जीव स्वर्ण निगम और

पर विराम लेता है। उम्मीद है मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत साफ जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई टीम और नई गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को।

kind of dealing with that. साथियों आज के सूर्य का सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी बढ़ने आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हो, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप,

तरह की मुस्कान कुछ छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती है। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा झुक कर इसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी, आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है, पसंद किया है, और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपके आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाने इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने।

हमारे साथ में लिखते हैं, आज की इबारत मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें गंवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूँ और जहाँ तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूँ। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखते कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक पत्र लिखा है, सच कहूँ आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं। बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदे पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: किसी प्रकार से अपनी अनुभव घोषित नहीं कर पाए। बीज और खाद में कुछ कुछ अनियमितताएं वो पाई गई है, तो इसलिए उसको जब्त करते हुए दुकानदार खुल किया जा रहा
1: है। के दूरीकरण और विकास के लिए 200 करोड़

put in as a piece of

करने से ही भी करता ना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे अहे तुझे पाठी परी तू जागर सुखलाती। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छुपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृत की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं।

पत्र में लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से भरा होता है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा,

सुकून और आनंद से भर देते हैं और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। इस तरह लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती न्यूज पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है, जिनमें खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ इस जीवन की सफर वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छाँव इस फिल्म कभी प्रदीप की आवाज में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, किसी गुप्त का संगीत।

था और एक जीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे

भी है। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश

हैं, फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी है जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घोट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती है। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुक कर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं किशोर।

से एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकते हैं, गीतकार पूछ सकते हैं, किस फिल्म में ये फिल्म आई ये पूछ सकते हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देख कर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देख कर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती है, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेज है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उससे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई, पर उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा एक तो आज तेरा पास

भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारी एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, उस चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले कहीं फूलों की दुकानों के किसानों की अशुद्ध जगह होते सदस्य को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का हो जाता है। वहीं पर एक साथ लिखते हैं, मराठी लेखक है पुलर देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं, बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश वाशिंग का संगीत।

जाना नहीं होगा, इसका मतलब है शोर कम करके अपनी आवाज को ही सुनना। कुछ प्लान कम होंगे तो फाइल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्ती से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की बुसौन भी खुशबू वाली खुशियाँ हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है। पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती, जिंदगी की बड़ी खुशियाँ किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही नहीं होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे है ना बड़े बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी इस आपके समय से बीच

योगेश ने इसे लिखा है और सलीम चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

बात शीता की समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा।

बहुत आराम महसूस तो मतलब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े झीले झूलते पहले, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफर का कार्यक्रम है हमें संपन्न करना होगा, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ की जिंदगी में नजरअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ भी

बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को।

हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग झुक जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति

0: आदमी हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। और जी मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह जो तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सेलेक्ट करने वाले थे दस साहब नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल के
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम से अपने हाथ में अनोखे
1: आज के सरकार विविध भारती हर रोज जाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों को
2: विविध भारती संगीत मनोरंजन और संस्कृति
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 मिनट होने को है, थोड़ी ही देर

व्यवस्था में हो रहे बावनवे जी साफ सुथरी कमीशन के लिए कुछ प्राथमिकताएं दी गई है। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खरीद आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल इबियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि जी सात शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, इबियान।

0: स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं हाइपरलिंक स्थलों पर IDY 2026 विशेष आयोजन की सांस्कृतिक विरासत ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का

प्रया की गाय गीत के साथ फिल्म का नाम दिल लगी सभी बधाई की रचना है नौशादी का संगीत।

हर एक मंदिर निर्देशन में समय तीन बदायूं जी जी रक्षा सुनने की आवाज फिल्म का नाम

समाचारों के साथ मैं पूनम जयकृष्णा। केंद्र ने झारखंड के 126 किलोमीटर से अधिक लंबे रांची महोदिया खंड पर सड़क निर्माण कार्य के लिए 214.79 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री इस परियोजना को रांची और जनक्षेत्र के बीच बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इससे यात्रा अधिक सुरक्षित सुगम और सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह झारखंड ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके सुदृढ़ीकरण से क्षेत्रीय विकास में भी

इससे पहले पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने 10,000 करोड़ का

que tengas varias.

0: बार बार होती रहे तो क्या ख्याल है? चलिए विषय बताए आपके।
1: बिल्कुल, आज के विषय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना?
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय

0: से हमारे घर के बुजुर्ग है उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ उसी आवाज में बात करिए, उससे आगे तो क्षमा भी नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिख कर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में बताएंगे?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भारती, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है।
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे। और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, इन खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहज कर रखना है। और जैसे ही बारिश आएगी

0: इतना इंतजार ना करना पड़े।
1: बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश होने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी
0: है। तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है जो गिरने का डर है वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें मक्खन मलाइयों और बेडमी पूरी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई है, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो आप सभी को इंतजार है कथा सुधा का। तो मुझे

जिसके लहरें कभी मुस्कुराहट कर जाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अंतिमी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं।

0: सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आधुनिक। पिछली कड़ी में आपने सुना
1: मंगला सुंदरी न सही पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खींचती है दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उस श्रृंखलता का व्यवहार करने लगी तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया

0: रही थी। सुरेश कुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जरूरत पड़े रहे और मंगला चली गई। एक गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, कुमार जी की कुछ कहा तुम नहीं क्या?
1: कहा क्यों नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, दुर्भाग्य नहीं रह सकते हैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, कृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

0: शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और शोक की आग खुल जा करती थी। देहात में छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट तीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब नई पूंजी निकल गई, पाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप चार प्राणियों का खर्च था। नासिक भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ जाते। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में घिस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुस जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहासी करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्राय विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, चार दिन के लिए आई हूँ तो क्या चक्की चलाऊ। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौंप लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती हैं। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो, उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। उसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुख कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती। विमल का मुझ तक से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब

0: उस कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हूँ। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अहला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी न पूछूं। ओह ठीक है,

0: बहुत पिछड़ गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रण क्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति शुद्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
1: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं कीड़ी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूँ।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई हैरान था, मुझे इसका दुख है।
0: सर,
1: अब ईश्वर ने चाहा कि तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
2: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी दूसरी नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए, संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
2: कहाँ से आती हो भैया?
1: गया था जरा पानी, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ाऊं?
2: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
1: ठीक है, बहन एक बात पूछूं, बताओगी?
2: हाँ।
1: विवाह से इस बात को रोके थे तुमसे?
2: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे, मेरे पास है क्या? मैंने कहा, तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने के लिए गुलाब की फूल है,

0: क्या वही अनोखी धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम नहीं है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में

0: से जगमगाती होती है। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में कहीं हो।
1: सोने में लगी हुई है, मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
2: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है, पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
0: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
2: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा, मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग तह

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, घी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी,

0: आपको भी पसंद आई है, आपको भी पसंद
1: आई। इंतजार है भाजपा
0: जी,
1: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
0: तो सुनते हैं एक गाना।

0: अच्छी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार, है ना,
1: दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल दुगना क्या, चौगुना आठ गुना होके मिलता है, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ तो प्यार की, स्नेह की यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सुना लीजिए अब कार्यक्रम में अंतराल में
0: बिल्कुल लेते हैं।

0: इसके बाद हम फिर हाजिर है कार्यक्रम है सखी सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए। क्योंकि

उनके साथ में दो चार पल सुख उनके साथ पीड़ाए थे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग

कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार।

बार बताया, लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी। तो उसी तरह

0: जी जब हम काम करते रहे ना उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर बस, क्योंकि क्या होता है उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी ये जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे

0: ऐसा होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर
1: काम कर रहे हैं,
0: उनकी बुजुर्गों की जो जरूरत

0: को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई। ये बहुत, ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नीना, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है, घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, तब तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारे

0: दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
1: एक साथ ही लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम पूर्ण शब्द कोई भी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहाँ थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है, दिन में अपनों के लिए अथाह प्रेम, उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
1: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चल कर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
0: क्या बात है,
1: बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
0: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं करते, वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई। ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी। IMPEA इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
1: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियाँ सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। उनके परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आचरण में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कार
0: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर
1: आते हैं क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
0: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।

बहुत इंतजार है क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले

0: जो खुशबू आती है नहीं
1: तौली तौली खुशबू,
0: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।

0: कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे तैयारियों की बात करिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपम्प वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुँचाने से पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना होना चाहिए।
1: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी

फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह है और बहुत सारा सा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी RO सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध न हो तो पानी को अच्छी तरह उबाल कर छान कर पीने की आदत डालना जरूरी है और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।

0: नदी भी पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां है जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए? आप एक गाना सुनना।

0: जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: साथ में

आयुर्वेदिक व्यंजन में मक्खन मलाई हो और साथ में बेडमी पूरी और आलू की सब्जी, इसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाई हो सर्दी सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी लखनऊ कानपुर में मिलने वाली बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चाय इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और

सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मुर्गा खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।

सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूरी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार रसेदार या डुबकी वाले आलू यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूँ का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गर्म मसाले। इस वीडियो में हलवाई जैसी खस्ता, बेदनी पूरी और

0: जाती है जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं हाँ। वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो वेड में पूरी होती है ना वो कड़क रहती है।
1: हाँ, जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए, तो आप सभी को सोनाली।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय के चौदह भवन से निश्चित स्वागत प्रदर्शन की घोषणा की। अभियान के वाहनों को हरी झंडी रवाना किया। अभियान का उद्देश्य नशीलों के प्रति लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है। मादक पदार्थों के सामूहिक प्रयास जरूरी है।

0: तरीका किस तरह है वो भी योग के अंतर्गत आता है, इसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
1: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पाँव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, निरस्त कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती है। तो आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। प्रयोग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
1: तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे

0: खुशियां पैदा करता है। दरअसल वही महान कहलाता है और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती है योग का?
1: लेकिन सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की

0: झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
1: प्रतिकूल होता है,
0: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखने की शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। दो ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही है, मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
1: कहते हैं लोग ब्रेक पी जाए।
0: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने ना जो रात का हमने विराम लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में गैप हो गया है, फास्टिंग हो गया है, तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए सुबह, थोड़ी ताजी हवा लेके

0: जी आपने बताया था अभी कि हर बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है। तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं।

0: होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मतलब मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ

0: पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: देखिए, आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय फुट अपने जीवन में रखते हैं, शास्त्रीय अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जगे वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप

0: शरीर में पकड़ लेंगे, यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जियेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ जाकर आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं, जाग जाए, हमारे सही मायनों में आप खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख्य था उस समय। किसी मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द

0: का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहत नामा कार्यक्रम में इस समय में मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और उनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रहता। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें और साथ ही हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर 4-4 घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने
1: सुबह 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश ये होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा।

tane meşhur

0: पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने का हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
0: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है, पर नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उससे भरपेट खा रहे हैं,

0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़ेंगे। सब प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था झुलमुल हो जाती है, खाना खाया, पानी पी लिया, फिर घुट खाया, फिर पानी पी लिया। तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने। मैं भी चाहती थी कि पानी के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी

बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए। तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी।

0: दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं। इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: बीच में पानी की आवश्यकता
0: ही पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाए।
1: और कहा ये भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे ही यही ध्यान में होना चाहिए, ना कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कुछ कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने

कॉन्सेंट्रेशन हो, वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना

0: वर्जन हमारी पति चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं। आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार के साथ साथ।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं

सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान नहीं। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, इसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से

बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं। तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ

सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बिहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारी एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास यही रखने अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती है, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे

0: थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई है तो आप पास में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पर आप कहते हैं।
0: देखिए आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए।

चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए।

0: दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए इससे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ दूसरे के साथ किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए और यही चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य करेंगे किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी
0: शुद्ध होगा। वही मैं कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं करेंगे लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं छोटा कि भाई बातचीत के साथ साथ जीत कहाँ गया तो उसी भाव को यहाँ पर

0: स्वस्थ बनती है। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहत नामक कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
1: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
0: प्रति पल
1: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान।

0: दूषित विचारों को त्यागना की आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है डेली, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उसमें गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक की अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। आप रोज हमें कोशिश करें, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा है।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, ये विचार भी तो उसमें शामिल है।

0: दोनों चीजों को सोचना है। हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है। नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है।
1: और वो
0: आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, इसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया,
0: इसे हर रोज लिखते जाइए। धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी

0: स्वभाव में शामिल हो जाएगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
0: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में कैसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देख कर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
1: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देख कर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर

0: कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को त्याग की तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती है, इसलिए हमें किसी का देख कर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से स्फूर्ति से भर दे।

0: से जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर कर, जैसे कई लोग ऑफिस में ही कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते। तो इन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष है ऑफिस में है, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात करें वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं। कोई हम साधु संन्यासी वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थी योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखें कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसलिए आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहाँ पर हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहाँ पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शुद्धिकरण होना चाहिए, तो शुद्धिकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आँख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाइए, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा। फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा। काम करने करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हुए, थोड़ा सा ध्यान रखते ध्यान
1: वहीं पर आप थोड़ा सा पाँव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आँखों की आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा आँख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आँखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आँखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
0: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं ऑफिस में काम करते करते, कोई टिप्स मिल जाए बिना किसी सोच समझ के उस

0: कितना लाभदायक होता है।
1: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग है। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए। आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप इसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे
0: अपनाएंगे।
1: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी। मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल है।

चावड़ा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों

0: और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक शाकाहारी?
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव है उसमें अपने आप को स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध साथी की ओर से।
1: धन्यवाद अरविंद जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया H.R. पाटले ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहत नामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।

Tedy máme vlastně velmi vyvit pár případů.

Grazie a tutti.

जब नहर में आज आप सुनवा रहे हैं हरिहरन जयराज की गजलें, वेलकम की सभी पेशकश शायद है जानकार अफसर।

केवल थी, इसके साथ ही कार्यक्रम मैं फिर अभी ही समाप्त हो गए। एफएम के 108.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विभाग केंद्र है। आप सुन रहे कार्यक्रम गुलमोहर टेलीविजन।

0: ऑक्सफर्ड मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कोई सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री से मन की बात के लिए चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात संसद मार्ग नई दिल्ली 1800।
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आपको थोड़ी सी देर में यानी शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी से राज्य की तरफ से। 7:10 का समय होगा कार्यक्रम जयमाला का। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इंद्रधनुष। रात के 8 बजे का समय होगा हवा महल का। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इंद्रलोक।

सुबह हम 8 मिनट पर ये आकाशवाणी जमशेद पर बहुत प्रसारित केंद्र है। शाम 4 बजे को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आज की

द्वारा सेवा काल निर्धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरुद्ध वेतन एवं अन्य लाभ दे करने के संबंध में राज्य में

बताना भी नहीं चाहते हैं। हम ऐसे भी चीजों को इनोवेट करें कि हमें पहले पता चल जाए कि उसको क्या समस्या है। आज के दिन में तो मस्तिष्क को समझने वाले मशीनें बन चुकी हैं। आज नए इनोवेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर रिजल्ट पाने में सक्षम होंगे। हम लोग भी लगातार

को दो पोल्ट्री फार्म बनाने में हम लोग को लगभग 15-17 लाख रुपए लग गया है। आमदनी इसमें 80-85 तक पहुंच सकता है, अगर ज्यादा मेहनत नहीं मरने से तक पहुंच सकता है। अभी तो हम लोग उम्मीद रखे हैं अभी तक गर्मी की वजह से,

जो मोहम्मद तभी दिया गए हैं ऐसे विभाग के बोलने को सुनने वाला ओपी जंगल में जो माना कंचन की आखिरी आज कल जन है।

去正费。说到这个正费，这里跟阿什玛古森巴的有关。

0: लो, अभी नहीं मतलब समझाऊ। देखो जी, तुम्हारी जगह अगर मेरे दांत में दर्द होता तो कब का निभा देता।
1: ठीक कहती हो भगवान, मैं भी यही कहता हूँ।
0: क्या कहती हूँ?
1: यही कि मेरी जगह अगर तुम्हारे दांत में दर्द होता तो मैं भी कब का निकलवा देता।
0: तो मेरा दांत तो तुम निकलवाने को तैयार हो, और अपना दांत ही जो दर्द कर रहा है क्यों नहीं निकलवा?

0: दर्द हुआ था और अब मेरी नानी जी ने मेरे दांत के नीचे देसी घी का गर्म हुई का खोया रखा था।
1: खोया?
0: हाँ जी, रुई तो गर्म देसी घी में भिगो कर दांत के नीचे रखा। कसम से कहती हूँ, मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया।

0: रहती हूँ, मेरी दादी के घर पर आई हुई थी। बस उन्होंने खिचड़ी जलाकर और गर्म पानी में घोलकर मुझे जो कुल्ले कराए और बस फिर मेरे दांत का दर्द फौरन गायब।
1: अब मुझे भी कुल्ले कराओगी?
0: हाँ जी, मैंने खिचड़ी

0: तुम्हारे दांत में बहुत दर्द है। कसम से कहती हूँ मेरे तो नाक में दम आ गया है।
1: क्या दांत में दर्द? बहन मेरी माँ ने तो लौंग का तेल लगाओ। हमारी उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था।
0: हाँ।
1: मैंने लौंग का तेल लगाया, फौरन ठीक हो गया।
0: अच्छा लौंग का तेल मगर यहाँ मिलेगा कहाँ?
1: मैं देखती हूँ घर में सब बचा हुआ पड़ा हो।
0: बड़ी मेहरबानी होगी बहन।
1: मेहरबानी की क्या बात है बहन, आए आपकी पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं अभी लाती हूँ।
0: ठीक है मैंने कहा कि लो ये गर्म पानी में फिर तेरी गुली लगी है, लो खुले कर लो।

मैं खुद रख लेता हूँ।

0: के साथ सुना में कोई लगाऊंगी और न सुन करवाऊंगी। बस हम बहुत जल्दी में चाहेंगे, जल्दी से आप दाग निकाल दीजिए।
1: सवाल है, आपको बहुत भाइयों से नहीं लगती है, कौन सा दाग है?
0: चलो जी आगे बढ़कर अपना दाग दिखा दो।
1: क्या आप खुशी हुआ?

0: hogy azt mondja, hogy nem tudja.
1: मैं तो दांत नहीं हूँ।

0: Non, sai che lo
1: magari si non c'è anche
0: lui. Cosa? La presenza? Ah, mi sembra di me. Oh, oh. Avete tempo, correte? Dacci che passi baby? O dacci un higa lei? A me, già per lui.
1: Sa che lui è fatto, sì, no?
0: Sì, per one. Però ti continui a fare. A te, ti leggi me. Sì, già per lui. Sì, dai, Shanti. A te, sai che mai mi dacci a te? Sì, ma ciao, ben. इनका तो खाना पीना भी बंद है। अरे ये दर्द ही तो जानलेवा होता है। तुम ऐसा करो, हाँ इनके जिस दांत में दर्द है ना,
1: हाँ
0: उसके नीचे पत्ते दबा दो, वारंटी को जाएगा।
1: अच्छा कैसे पत्ते हैं?
0: एक बार मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तब मेरी माँ ये पत्ते लाई थी।
1: हाँ
0: मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया था। तो फिर आऊंगी पता करने।
2: हाँ वो का काम करा है,
0: लो जी ये पत्ते मुँह में रख के देख लो। वो ठीक हो जाएगा। घबराओ मत,
2: कमाल है। मुझे तो कांता ने बताया कि तुम्हारे इनके दांत में दर्द है।
0: अरे हाँ,
2: आवाज तो आ रही थी। मैंने समझा था भाई साहब रोजाना तरबियत कर रहे होंगे।
0: नहीं बहन, ये गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे।
2: अरे हाँ, तब तो मुझे भी हुआ था कि आज दांत लंबा हो गया।
0: हाँ बहन, तुमको बहुत तकलीफ है।
2: अरे हाँ, दांत में कुछ लगाया हो?
0: अरे सभी कुछ तो लगाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही किया।
2: कमाल है, तुम ऐसा करो, ये लहसुन लो, मैं छील कर लाई हूँ। तुम फौरन जिस जगह दांत में दांत है उसके नीचे दबा दो।
0: लेकिन

वो लहसुन मुझे निकल जाता है, ये मैं जो दवा घी में लाया ना ये रख दो। फिर देख लो उन लहसुन की, लेकिन कुछ नहीं रखू। एक बार मेरी माँ के दांत में दर्द हुआ।

0: कैसे बताएं भाई साहब, उनके दांत में बेहद दर्द है, सब इलाज करके देख लिया, कुछ बनता ही नहीं। अरे भाई साहब, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, इसने जैसी दवा बताई है कोई इतना
1: जाएगी। कुछ नुस्खे होंगे ना, नुस्खे जो सिर्फ किसी के दिन वाले होंगे ने। तेरी किस्मत चंगी है, अभी इससे आ गए
2: हाँ, मगर इससे क्या होगा?
1: ओए कुछ की है ना, ओए जाती नहीं। अरे बस तू भी आ रही बात नहीं, और देखो दे दांत के दर्द उड़ होता है तो दांत की कीड़ा लगाओ।

फाइटर की डिफीट हुई थी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

close to Him.

धरती पर दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई

इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।

ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही है, जिसमें यात्रा समय में 47% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक

0: को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर प्रतिबंध से रोक लगा दी है। पश्चिम पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक कपिल कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होरमूल जलबंदो मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा

0: जो बनवा मंडी को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह कोच 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। 18 तारीख को गुजरात की भरी बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के

0: संस्कार वो भी नहीं है।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए, तो उसके लिए कुछ नहीं।

जिन्होंने अपने होश और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो है आज

वक्त मन सुकून और चैन से भर जाता है। गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकार

बैठने के साथ चली बढ़े। वे अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, ये जन्मे थे। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से।

दिलचस्प कहानी है। गुजर जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा ने पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गयी। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नजर में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बन गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित

स्त्रियां को सूट कर प्रेम किया था। रोमांटिक विदलाइफ संस्करण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत है, हाँ मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूंगा।

जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अक्सर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है, सुनिए।

को सचिन देवर्मन ने सुरैय की लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एच ई वर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत वर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन वर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, तो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सबके लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी, सुनिए।
1: 57 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक काबरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा

साल बाद एक दिन फिल्म बिलवा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी। उठो उठो, देखो बाहर कौन आया है।

कुर्सियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूर जहाँ और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गयी, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रही। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तारिक महमूद जैसे दिग्गज

तो अठावन फिल्म मालिक में आया श्रीया का एक नायाब गाना, साथ में शरद महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

और जल्दी कर सकते थे। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी 2004 में उन्होंने इस पानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

टकराता है। हमारी मदहोशी के बारे में जमाने का तो यही अंदाज़ा।

को नैनों की जादूगरी का क्या कहना, आंखों में सुरूर लबों पे मुस्कान, यही है पहचान दिल भर की इस हसीन शख्सियत का क्या कहना।

इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा। गुलों से बाहर आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।